0: the removals and directed his attack at Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Delhi Chief Electoral Officer says that houses in the area were demolished in the year 2022-23 and that the electors are no longer ordinarily residents there. As ordinary residents, that is, they can reapply through Form 6. Meanwhile, the CWC is expected to meet today and a resolution on the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is likely with Congress finalizing its EC strategy. In fact, amidst all this, it's the SP Chief Akhilesh Yadav who will skip the opposition bloc meet which is scheduled for tomorrow due to prior commitments.
1: 729 वोट हैं यहाँ पे एक व्यक्ति को आपने SIR में डाला है
2: वोटर लिस्ट पे नाम है इनका आपने उतार दिया उनका नाम
1: मकान से कुछ लेना देना नहीं होता है वोट का इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है इनका नाम आपने किस बेसिस आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए मैं आपको दूसरे तरीके से देखूंगा
3: ये हताशा और निराशा है जिन्होंने आज यही कांग्रेस के लोग जब केरल में चुनाव जीतते हैं तो उस दिन इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है जिस दिन तमिलनाडु में चुनाव जीतते हैं इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है पश्चिम बंगाल में जब हारते हैं तब वो इलेक्शन कमीशन दोषी जब कर्नाटका में उनको जीत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है लेकिन जब गुजरात में जीत होती है तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में जब जीत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और राहुल गांधी जी जो देश की जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं टीएमसी के लोग जनता ने उनको जो सबक सिखाया उसे सीखने की आवश्यकता है
0: न्यूज़ फ्रॉम डाउन साउथ देन द धारापुरम बाइपोल बैटल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज टर्निंग इंक्रीजिंगली बेटर विद द AIADMK DMK एंड द TVK ट्रेडिंग बब्स इट्स AIADMK चीफ एडप्पडी पलानीस्वामी हु टुक अ पर्सनल स्वाइप एट चीफ मिनिस्टर विजय सिंह ट्रू अफेक्शन मीन्स लिविंग विद योर वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड दैट स्टेज डायलॉग्स अलोन आर नॉट इनफ द TVK हैज हिट बैक नाउ सेइंग दैट विजय हैज नेवर मेड पर्सनल रिमार्क्स व्हाइल क्वेश्चनिंग EPS ओवर हिज इलेक्टोरल रिकॉर्ड एंड आस्किंग हिम टू इंट्रोस्पेक्ट व्हाई AIADMK लीडर्स आर स्विचिंग साइड्स The bipoll was triggered after sitting AIADMK MLA Satyabhama joined TVK and is now contesting on a TVK ticket. AIADMK is seeking to retain SC reserved seat while DMK is looking to turn it into a three-way contest. All right, let's move on to other news that we are tracking. With regard to the Mekhadatu dam project, it's Tamil Nadu versus Karnataka war again, which has further escalated. DK Shivakumar, that is, saying that Tamil Nadu should send team to inspect Mekhadatu side. He's gone on to say that request made to meet Tamil Nadu Chief Minister on Mekhadatu. He's also said that the centre convinced Mekhadatu water only for drinking. So with this, the Tamil Nadu versus Karnataka battle further intensifying and it's DK Shivakumar who's escalated his attack. He says that centre is now convinced on the Mekhadatu issue. And with this, he's gone on to say that Tamil Nadu should send team to inspect the very site. And for now, we head into a very short break. News and updates to continue. You're watching NDTV. Stay tuned.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal. What's happening?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: A healthier India doesn't happen in a day.
7: It starts with the health choices that we make every day.
8: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर
9: सेहत का अधिकार.
6: Because banega swasth India is just not about living longer.
10: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
9: One informed choice aur ek healthier action.
6: Giving better health in more hands every day.

0: the show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
2: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
3: जब तक लाजवाब ना बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: A healthier India doesn't happen in a day.
8: It starts with the health choices that we make every day.
9: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
7: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
10: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
9: One informed choice और एक healthier action.
7: Giving better health in more hands every day.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: Hello and welcome to Apple Park.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: A healthier India doesn't happen in a day.
6: It starts with the health choices that we make every day.
7: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
5: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
8: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
7: One informed choice और एक healthier action.
5: Giving better health in more hands. Every day.

0: videos and forensic evidence that's being examined. The police have registered an FIR against an unidentified person following complaints from students. Maharashtra CEO seeks for changes for the SIR notices and has proposed changes seeking more discretion for electoral registration officers, allowing them to decide logical discrepancies after hearing and giving EROs more option. And OpenAI will not release its new AI model, GPT 6.1 Astra. Due to safety concerns, the ChatGPT maker has confirmed the model reportedly failed safety and alignment tests with higher levels of deception detected. OpenAI is now focusing on improving safety in future models. And India wins silver medal in women's trap team event at Asian Games. It's a new Neeru Dhanda who has qualified for the trap final. Let's begin with break news coming in, and this is coming out of Srinagar. We have Farooq Abdullah, who has attended a musical evening in Srinagar and has spoken on changes in Kashmir. Is Farooq Abdullah saying that Kashmir is changing and new changes on the horizon? And it is, of course, Farooq Abdullah there making a point that India is also changing. While attending that musical evening in Srinagar, he's gone ahead and spoken of the changes that one can see, whether it's in Kashmir or whether it's in India, and the changes that are on the horizon. Let's listen in to Farooq Abdullah.
1: Kashmir badal raha hai. Hindustan badal raha hai. एक नई तब्दीलियां आने वाली है इंशाल्लाह.
0: We have Nazeer, my colleague, joining us in order to get us details. Nazeer, talk us through, Farooq Abdullah there attending that musical evening and talking about how things are changing for the better.
2: Well, it was a musical event in Srinagar, and Farooq Abdullah attended that musical event. It was a group from Mumbai which came to Srinagar and to harness the talent of the local artists. And they actually displayed their talent, and Farooq Abdullah was really impressed. And he said, Kashmir badal raha hai, Hindustan badal raha hai. I'm joined by Mr. Mankotia, senior BJP leader and the legislator here in Jammu and Kashmir Assembly, which is seeing a lot of fireworks between the BJP and the National Conference over the resolution of statehood. But am I talking to Mr. Mankotia on this issue? Farooq Saab ne bataya ki ek musical event pe Kashmir badal raha hai. इतना अच्छा म्यूजिकल इवेंट हो रहे हैं, भारत भी बदल रहा है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया?
3: बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा कि बदल रहा है. बट बेटे को भी समझाएं ना, ये तो लोगों को समझाते हैं, बेटे को जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी समझाएं कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में चेंजिंग हो रही है. बट बेटा वो रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस करता है जो गैर आइनी है, गैर संविधानिक है, और मैं नहीं कहता, उनका लॉ डिपार्टमेंट ही कहता है कि दिस रेजोल्यूशन इज टोटली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल. यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस this resolution in the assembly of Jammu and Kashmir.
2: Musical event pe us pe hum alag puchunga main. Musical event pe jo hai Farooq Abdullah ki pratikriya, usne kaha ki dekhiye Bharat mein tabdili aa rahe hai pure Kashmir mein, aur Bombay ka group yahan aaya, us pe main aapse baat kar sakta hu. तो क्या है आपकी उसमें?
3: डेफिनेटली कश्मीर में अब जब देखिए कि खासकर जो है 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तो एकदम मिलिटेंसी को एक हालात बदले हैं. दुनिया और देश के लोग का जो है मूवमेंट जो है कश्मीर की तरफ बढ़ा है, और एक मैसेज जो कश्मीर का और ख़ासकर जम्मू कश्मीर का मैसेज पूरे वर्ल्ड के अंदर था कि वहाँ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पर मिलिटेंसी है, तो एकदम उसमें अंकुश लगा है. और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के जो है जो पॉजिटिव मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड में गया है, लेकिन इस तरीके
2: थैंक यू सो मच. सो इज सेइंग पॉजिटिव मैसेज, इट इज अ पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम कश्मीर, बट बीजेपी क्लियरली सेइंग दे आर टर्मिंग द स्टेटहुड रेजोल्यूशन एज एंटी नेशनल, एंड एक्चुअली दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग सिंस यस्टरडे.
0: राइट नजीर, लेट्स जस्ट आल्सो गेट इन अ वॉइस ऑफ द बीजेपी कमिंग इन. रविंद्र रैना आल्सो स्पीकिंग ऑन द मैटर. सर, आपका क्या रिएक्शन है जो बोला गया है फारूक अब्दुल्ला से कि बदलाव आ रहा है, नॉट जस्ट इन कश्मीर बट बदलाव हिंदुस्तान में आ रहा है?
4: Yes, absolutely. Dr. Farooq Abdullah in a musical night, a function organized by some of the youngsters in Kashmir Valley, said there are drastic changes in Kashmir Valley. And I think absolutely what Dr. Farooq Abdullah had said is the situation in Jammu and Kashmir we have seen in past. There were...

0: Now, does that look familiar? Well, if it does, then you and I are among the approximately 8.3 billion people in the world who just don't have enough time. Now, whether it's at work or at home, our days are spent constantly racing the clock. But while we are busy chasing deadlines, errands, and the to-do lists, what are we leaving behind? Modern life has made parents' time poor, and nowhere is this felt more acutely than inside our homes.
1: Extremely difficult to manage time for myself, and most importantly with the family, from commute and working hours combined together, usually it's up around 13 hours a day. We hardly get time for ourselves, and obviously the personal choices and our own passion actually pushes to the bottom list.
2: 5 baje uthna, pani bharna, khana peena banana, bachcho ka alag, hamara alag. Meri beti 3 saal ki ho gayi, mujhe pata nahi laga. आप मानोगे बेटी मैंने 8 महीने की डाली थी, अब वो 1.5 साल की हो गई है, मुझे पता नहीं चला।
3: मैं घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत ही बिजी रहती है। खाना बनाना, दोपहर का भी करना, और फिर साथ साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना, फिर अपना करना, तो दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कब 4 बज गए, कब 5 बज गए।
4: आई थिंक कैसे 8 बजते हैं पता नहीं चलता है, और वीकडे नॉर्मली 0 टाइप ही मिलता है, और इसीलिए वीकडे पे हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही छोड़ के आते हैं बच्चों को।
5: काफ़ी लेट टाइम मिलता है, रात को ही मिलता है, जो भी मिलता है सोने से पहले वही टाइम दे पाते हैं, अदरवाइज संडे जो हमारा ऑफ होता है उस दिन टाइम मिलता है।
3: बच्चों को संभाले या काम घर का करें, तो ये तो दोनों नहीं हो पाते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर छोड़ जाओ, तो अपना घर का काम जो होता है वो कर लो।
6: I think one of the biggest challenge that parents actually face today is they really want to be present, but they're unable to, because we're constantly being pulled in many different directions, whether it's work, whether it's household responsibilities, whether it's tech and digital or entertainment or WhatsApp groups or on our phones. We are constantly scheduling the next thing. We're never in the present. And there's always that something that's demanding our attention in that present moment.
7: यहाँ पर देखिए सर, क्योंकि ना हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर, है ना, अल्पसंख्यक बोल दीजिए, गरीब बोल दीजिए, हर तरीके के लोग होते हैं। तो चुनौती तो उनके पास यही है कि एक तो उनके पास ना समय नहीं है, आते ही वो गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं, कमाने खाने के लिए ही आए हैं, तो अपना सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन उनका मतलब सिर्फ काम में ही बिजी रहता है। कोई कहीं काम करता है, कोई किसी तरीके में काम करता है, लेकिन बिजी बहुत रहते हैं। तो समझते वो भी हैं कि टाइम की कमी है बच्चों के लिए, उनके पास समय नहीं है, बट मजबूर है वो भी, क्योंकि कमाएंगे खाएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलाएंगे।
0: इफ टाइम इज फाइनाइट, हाउ डू वी अनलॉक इट? We can't magically create a 25th hour in the day, but there are hacks and tips to create and manage time and stop low priority clutter from stealing the hours we do have.
8: I think time poverty is a state of mind. I mean, I've actually felt that as I've gotten older, I have adequate time. A lot of people look at me and say, Mother, CEO, you must be so busy, you know, you've done Shark Tank, you've done this, you've done that.

0: या कोई भी एडल्ट जो है एक बच्चे के अराउंड, वो उस बच्चे से पूछे वो क्या करना चाहते हैं और उस बच्चे को लीड करने दे, बट पेरेंट्स को उनके साथ बस उसका हिस्सा बनना है उस जर्नी का। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा बोल सकता है कि मेरे को पार्क में घूमने जाना है, या कोई बोल सकता है मेरे को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, या कोई मेरा बेटा है तो वो बोलता है कि मेरे साथ लेगो बनाओ। सो इस टाइप से बच्चा डिसाइड कर रहा है उसको किस चीज़ में मज़ा आएगा, बच्चा डिसाइड कर रहा है वो क्या करना चाहता है, और जो भी एडल्ट है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो कोई यंग कॉलेज के लड़के या लड़कियां हो जो अपने आसपास किसी बच्चे को देख रहे हैं, उसका हिस्सा बने। सो लेट द चाइल्ड लीड एंड द एडल्ट्स फॉलो इन एन अनइंटरप्टेड, फॉर एन अनइंटरप्टेड 1 आवर। बचपन मनाओ में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं 8 वंडर्स ऑफ चाइल्डहुड। तो एक बच्चे के 8 वंडर्स हैं, प्ले है उसमें, एक सोशल बॉन्डिंग है, क्रिएटिविटी है, ऐसे 8 वंडर्स हैं। और ये प्लान करके नहीं आते, बचपन के 8 रंग एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, और ये प्लान करके नहीं देखे जा सकते। तो बेसिकली इस पूरे एक्टिविटी में आइडिया ये है, बचपन इज़ ग्रेट आर में आइडिया ये है कि आप 1 घंटे आपने एक बच्चे के साथ समय बिताया, उसकी गतिविधि का आप हिस्सा बने, और उसके बाद आप उस एक्टिविटी के बाद आप एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें थी, क्या प्ले था, क्या क्वाइट टाइम था, क्या सोशल बॉन्डिंग थी, क्या क्रिएटिविटी थी। तो अपने आप ही एक ही गतिविधि में, एक बच्चे के एक सिंगल एक्टिविटी में कई सारे पहलू हमको बचपन के देखने को मिलते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करना, वो 8 वंडर्स ऑफ चाइल्डहुड में से कौन कौन सी चीज़ें हमको दिखाई दी। दूसरा, कोशिश ये करना है कि वो एक्टिविटी उनके फोटोग्राफ के लिए नहीं है, वो एक्टिविटी मेरे लिए एज एन एडल्ट उसका इस हिस्सा बनने के लिए, लेकिन शेयर करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो एक कोई दूर का एक शॉट हो सकता है, या वो जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी का शॉट हो सकता है, या बच्चे का साइड से शॉट हो सकता है, पीछे से कुछ हो सकता है, बिना कंसेंट के ना हो। अगर आप कोई संस्था है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई कॉरपोरेट है, या फिर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, या कोई एनजीओ है, तो उनके लिए 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि क्या हम अपने संस्था के द्वारा अपने आसपास जितने भी एडल्ट्स हैं, हमारे टीम में, हमारी संस्थाओं में जो एडल्ट्स हैं, उनको इनक्रेज कर सकते हैं टू डू एन वन टू स्पेंड वन इन अनइंटरप्टेड आवर विद अ चाइल्ड। और दूसरा ये कि क्या हम अपने यहाँ ऐसे स्पेसेस होल्ड कर सकते हैं जिसमें बच्चे और एडल्ट एक साथ आ सकें, या फिर एक कॉरपोरेट हो गया जिसने अपने यहाँ, जनरली कॉरपोरेट्स में होता भी है, फैमिली डेज होते हैं, सो कॉरपोरेट ने होस्ट कर लिया अपने यहाँ कि भाई बच्चे आए एंड पेरेंट्स आए।
1: सो निहाल गाओ रे।
2: The Bachpan is Great Hour isn't just an invitation for parents at home. It's a movement for everyone. Organizations, workplaces, schools, NGOs, neighborhoods can all step up to anchor the hour. For more details on how you can get involved, log on to ndtv.com/bachpanmanao. We hope you will all create your own Bachpan is Great Hour. 1 hour of undivided attention for children around you. And after that hour, reflect on what naturally unfolded. The creativity, the laughter, the masti, and the quiet moments. Then tell us which wonder you spotted. You can post a photo with hashtag BachpanIsGreatHour. You can email us at bachpanmanao@gmail.com or WhatsApp a voice note on this number. So this Daan Utsav, pledge your hour. Give your children the one gift money can never buy, your full, undivided presence.

0: are due in the states of Punjab, Uttar Pradesh and others. They clearly stated that the fight is bigger than just these elections. They will definitely go to fight these elections, but they want the entire election process to be more transparent. Democracy should be saved, and therefore the reason perhaps now it will be a bigger agitation from press conferences at the headquarters to ground. There will be more and more agitation that will be followed from here on.
1: All right. Thanks so much, Aishwarya, for joining us with those details. And remember, the India Bloc too will be meeting. So the face-off over the special intensive revision of electoral rolls has escalated further at a key Congress party meeting that we were talking about. Party Chief Mallikarjun Kharge started off by listing five demands, which included the timely access for political parties to electoral rolls, as well as the relevant data in a simple format. Meanwhile, Congress stepping up its attack over the SIR and alleged deletion of voters. The party has demanded the CC's resignation, immediate suspension of the SIR, as well as restoration of the 13 crore voters, alleging that the issue goes beyond the Election Commission. Meanwhile, the Supreme Court has agreed an early hearing on the petition, raising questions over the decision making within the Election Commission of India.
2: My Sida Sida, 1929 mein, Simon go back. जो स्लोगन चला हुआ है आज SIR गो बैक सर गो बैक तो जब तक सर वापस नहीं ले इस देश में युवा नहीं रुकने वाला है। आने वाले दिनों में जैसा साइमन गो बैक एजिटेशन में भगत सिंह ने जो लड़ाई किए आज राहुल गांधी जी ने ये सर गो बैक में लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग सब मदद देना है, बहुत जरूरी है।
3: আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, এই জোটে যোগ দিতে
4: সঙ্গে
5: বৈঠক
4: করবেন,
6: ভালো করে নজর রাখবেন, এর সঙ্গে কোন দেশ বিরোধী শক্তির আবার মিটিং না হয়। দিমাগি নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছে, একসাথে জামাত
7: साथ। राजेंद्र पाल गौतम है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी। CWC की अहम बैठक है, इस क्या अहम रणनीति देखेंगे कांग्रेस को आने वाले दिनों?
8: एक ही चीज़ है, देश को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। पहले भी अंग्रेजों से आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लड़ा गया, और अभी भी इस देश को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पूरी रणनीति बनाई जाएगी, देश हमारे लिए प्राथमिकता है। सत्ता आएगी जाएगी वो महत्वपूर्ण नहीं है, देश बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए।
7: आज की मीटिंग के बाद कल इंडिया अलायंस की मीटिंग है, और बताया जा रहा है अखिलेश यादव उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, सपा होगी, अखिलेश नहीं आ रहे, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो।
8: हर पार्टी का कोई ना कोई अपना पहले से फिक्स एजेंडा हो सकता है, उनके टीम के कोई वरिष्ठ नेता आएंगे।
7: माना जा रहा है कि ये जो बयानबाजियां पिछले दिनों में आपके नेताओं की तरफ से हुई, उधर से भी हुई, उसके असर के तौर पर?
8: नहीं, मुझे नहीं लगता।
7: एक आखिरी में सर, कल मायावती का जिस तरीके से बयान आया चंद्रशेखर को आज़ाद को लेकर के, कि उनको धांधली करके जिताया गया, आप कैसे इस बयान को देख रहे हैं?
8: बीजेपी तो ये करती आई है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद करता है, EVM के साथ भी पूरा गड़बड़ी चल रही है, वोट चोरी और वोट काटना, जीते हुए को हराना
7: है कि चंद्रशेखर को
8: जिताया है, पॉसिबल है।
7: बहन जी की बात का समर्थन कर रहे
8: हैं? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, बहन जी तो आज बोल रही हैं, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जीते हुए को हरा देता है, हारे हुए को जिता देता है।
7: मेरे साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं। CEC के मुद्दे पर जो CWC की बैठक आज हो रही है, क्या आप लोग इस बैठक में तय करने वाले, क्या रणनीति रहेगी?
9: ये तो भैया अंदर जाकर ही पता चलेगा, रेजुलेशन एक सारे डिस्कशन होगी, उसके बाद क्या होता है अभी देखने वाली बात है, इसको पहले नहीं बोला जा सकता।
10: रमेश कुमार कैनॉट कंटिन्यू,
1: In fact, to prove his point, leader of opposition Rahul Gandhi visited the Bela estate yesterday in Delhi, where he alleged that 729 voters there, only one remains on the rolls after the SIR. Listen into what he said.

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
0: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
6: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
7: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
8: Gold rush on the field.
9: Go for glory, only on NDTV.
10: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
11: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
12: High rate, check the audio.
10: Let's do it. Let's start.
13: Breaking stories, we're jumping straight into it.
10: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
14: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
10: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
15: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
14: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
10: The line of control, Shivarur, NDTV.
16: I know the feeling of finding the middle of the bat. Now I'm chasing the cleanest swing and the perfect shot.
17: The sport may change. The champion's instinct doesn't.
18: It's not just about the game. It's the mindset, the focus, and the instinct to compete.
5: Across India, on some of the country's finest greens, top golfers take on top business leaders on the fairways. 10 pro-ams, 10 different challenges, and 10 courses.
9: India's premier pro-am is back.
17: Season 2, bigger, better. Game on.
16: You think you can beat me?
18: The course of champions, conversation of leaders.
0: The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
19: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
20: This car makes no sense, yet it makes every sense.
21: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
2: Your friend said, "Ye le le." We said,
1: Welcome back. India has a new shooting star and she's just scripted Asian Games history. Haryana's Neeru Dhanda has become the first Indian shooter to win an Asian gold in the women's trap individual event, smashing the continental record in the process. The 26-year-old followed up her team silver with a stunning score of 28, battering the previous Asian record of 24. A historic golden performance for India.
3: With me is the gold medalist from the Aichi Nagoya Asian Games in trap shooting. Many, many congratulations, Neeru. ये moment बेहद special है क्योंकि सबसे पहली बार एक लड़की ने trap shooting में gold लाया है. आपको ये बात किसी ने बताया कि पहली बार एक लड़की ने trap shooting में gold लाया है?
22: हाँ मैम, अभी आज जीतने के बाद पता चला कि पहला है. उसे पहले पता होता तो शायद मैं कहीं कहीं भटक जाती. अच्छा था, नहीं पता था और मैं और अंदर से फाइट कर पाई. लेकिन ये था कि अपने देश के लिए गोल्ड तो जीतना है पर अपने प्रोसेस में रह के जीतना है, ऐसा था.
3: और बहुत टाइम नहीं हुआ है कि आप शूटिंग स्पोर्ट में आए, करीब 2.5 साल ही हुए हैं.
22: नहीं मैम, 2019 में शुरू किया था, अभी हो गया टाइम. मेन ट्रेनिंग कोविड के बाद शुरू की थी मैंने रेगुलर.
3: ओके, तो तब से लेकर अब तक मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप एशियन गेम्स के सिर्फ पोडियम में नहीं बल्कि गोल्ड भी ले पाए हैं, तो मुझे थोड़ा बताइए क्या प्रोसेस आपने किया है इतनी जल्दी इतने बड़े मेडल को हासिल करने के लिए?
22: प्रोसेस तो मैम देखो, सब खिलाड़ी कोई भी वो करता ही है, लेकिन मेरे साथ सपोर्ट अच्छा था मेरे कोच का. मेरे कोच हर बार मुझे मोटिवेट रखना हर एक परिस्थिति में, चाहे फैमिली परेशानी है, गेम को लेके है, बाहर का कुछ भी है, मेरे को मोटिवेट रखना. मेरे मनसेर सिंह कोच पर्सनल कोच हैं ग्रास रूट से स्टार्टिंग से, और पीटर कोच वो भी बहुत मतलब मोटिवेट रखते हैं कि अपनी टेक्निक पे प्रोसेस रखना है. और ओलंपिक चैंपियन है वो, और अभी उनके साथ काम कर रही हूँ पिछले एक साल से. वो इंडियन टीम के कोच हैं, कैंप में ट्रेनिंग करने को मिलता है उनके साथ, करते हैं टीम के साथ रहते हैं.
3: नीरू, 3 हफ्ते आप शायद ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे गेम से पहले, आप काफ़ी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे. उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आपको पता था कि ये दिन भी आने वाला है?
22: ये तो देखो कहीं ना कहीं पता तो देखो दिन का किसी को नहीं रहता कि उस दिन क्या होने वाला है, पर ये था कि मैं अगर कंट्रोल में अपने आप को रखूंगी तो ये दिन भी सच हो जाएगा जो मैंने सोच रखा है. बस वही था, अपने आप को मोटिवेट रखना था. और उस टाइम मेरे कोच मनसेर सिंह ने काफ़ी हेल्प की थी कि मोटिवेट रहना है और तू पक्का जाएगी, तू जीत के आएगी. मैं टीम के 2 दिन बाद आई थी क्योंकि यहाँ पे
3: आपने सिर्फ यहाँ पर गोल्ड नहीं जीता है बल्कि एक टीम सिल्वर भी जीता है. आपको लगता है कि गोल्ड हाथ से स्लिप हो गया, वहाँ पे भी टीम में भी गोल्ड आ सकता था?
22: नहीं देखो, वो तो थोड़ा लक पे भी छोड़ देते हैं हम अपना प्रोसेस. मेरे टीममेट्स ने भी बहुत अच्छा खेला है, ऐसा नहीं है. वो जो उनके हाथ में था उन्होंने किया है, जो मेरे हाथ में था मैंने किया है. वो तो टीम का एक एफर्ट होता है, हमने तीनों ने एफर्ट डाले हैं तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं.
1: All right, a spectacular performance there. Now, Jodhpur is witnessing a display of global air power as exercise Tarang Shakti 2026 enters its operational phase. The IAF is training alongside air forces from 7 friendly nations with American F-35s, French Rafales, Tejas and advanced support aircraft taking part under the theme Power in Partnership. The exercise focuses on strengthening military cooperation. Take a look.

0: हुए भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। देश को करतारपुर साहब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन आसान हो जाएंगे। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है।
1: Words are easy to say. What matters is what got built, what got renamed, what got reopened and remembered because of them. And here's the record. A name asserted on the world stage. Not just a rebranding exercise, a reminder to the world. An ancient seat of learning, burnt by invaders 8 centuries ago, revived with a new campus on the same ground. Temple corridors rebuilt at a pace India hasn't seen in centuries. Millets, jowar, bajra, ragi, what ancient Bharat ate off most Indian plates for generations, back on it now. A corridor across a hard border, reconnecting pilgrims to the resting place of Guru Nanak. A martyrdom 300 years old, finally given a date on the national calendar. 6 pieces of one record. Over the next half hour, we will go through each of them in detail to tell you why they are not just pieces of data. They connect to the larger civilizational arc of India. Let's first start with the idea that runs underneath everything on that main graphic. Civilization, deliberately now turned into statecraft. Not just decoration coming in on top of governance. It's a method, repeated often enough across a decade, that it now reads almost as a doctrine. We start with the scripture reinstalled in Parliament and the book that has now been gone and given all the way to Moscow.

0: congratulated Rahul Gandhiji for taking up the biggest issue of Indian democracy through vote chori campaign. Last 18-19 months, he is continuously presenting to the nation with evidence that the Chief Election Commissioner is completely compromised. The election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list. Both of them are compromised. Both of them are making as a design for winning election to BJP.
1: चुनाव दोबारा कराने चाहिए, क्योंकि ये अब साबित हो गया है कि हरियाणा का चुनाव पूरी तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग ने मिली भगत करके जन भावना को हराने का काम किया हरियाणा में। हरियाणा में वोट चोरी नहीं, सरकार चोरी की है इन्होंने। और आज वो साबित हो गया है जब ये 14 चिट्ठियां लिखी गई 10 महीने में, और पहली चिट्ठी उस दिन लिखी गई जिस दिन राहुल जी ने हरियाणा की प्रेस वार्ता करी। इसीलिए हमारी मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तुरंत हो, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी कार्रवाई हो, और ये जिम्मेदारी सरकार की है।
2: मैं सीधा सीधा 1929 में साइमन गो बैक जो स्लोगन चला हुआ है, आज SIR गो बैक, सर गो बैक, तो जब तक सर वापस नहीं ले इस देश में युवा नहीं रुकने वाला है। आने वाले दिनों में जैसा साइमन गो बैक एजिटेशन में भगत सिंह ने जो लड़ाई किए, आज राहुल गांधी जी ने ये सर गो बैक में लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग सब मदद देना है, बहुत जरूरी है।
3: আজ কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, এই জোটে যোগ দিতে
4: দিল্লি জোটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন,
5: ভালো করে নজর রাখবেন। এর সঙ্গে কোন দেশ বিরোধী শক্তির আবার মিটিং না হয়। দিমাগি নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছে, একসাথে জামাত।
6: मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी। CWC की अहम बैठक है, इस क्या अहम रणनीति देखेंगे कांग्रेस को आने वाले?
7: एक ही चीज़ है, देश को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। पहले भी अंग्रेजों से आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लड़ा गया, और अभी भी इस देश को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पूरी रणनीति बनाई जाएगी, देश हमारे लिए प्राथमिकता है। सत्ता आएगी जाएगी वो महत्वपूर्ण नहीं है, देश बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए।
6: आज की मीटिंग के बाद कल इंडिया अलायंस की मीटिंग है, और बताया जा रहा है अखिलेश यादव उस बैठक में शामिल नहीं होंगे, सपा होगी, अखिलेश नहीं आ रहे, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो।
7: हर पार्टी का कोई ना कोई अपना पहले से फिक्स एजेंडा हो सकता है, उनके टीम के कोई वरिष्ठ नेता आएंगे।
6: माना जा रहा है कि जो बयानबाजियां पिछले दिनों में आपके नेताओं की तरफ से हुई, उधर से भी हुई, उसके असर के तौर पर?
7: नहीं, मुझे नहीं लगता।
6: एक आखिरी में सर, कल मायावती का जिस तरीके से बयान आया चंद्रशेखर को, आज़ाद को लेकर के, कि उनको धांधली करके जिताया गया, आप कैसे इस बयान को देख रहे हैं?
7: अभी तो ये करती आई है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन BJP की मदद करता है, EVM के साथ भी पूरा गड़बड़ी चल रही है, वोट चोरी और वोट काटना, जीते हुए को हराना
6: कि चंद्रशेखर को जिताया,
7: पॉसिबल है, पॉसिबल है।
6: बहन जी की बात का समर्थन कर रहे
7: हैं? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, बहन जी तो आज बोल रही हैं, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जीते हुए को हरा देता है, हारे हुए को जिता देता है।
6: मेरे साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं। CEC के मुद्दे पर जो CWC की बैठक आज हो रही है, क्या आप लोग इस बैठक में तय करने वाले, क्या रणनीति रहेगी?
8: ये तो भैया अंदर जाकर ही पता चलेगा, रेजुलेशन एक सारी डिस्कशन होगी, उसके बाद क्या होता है अभी देखने वाली बात है, इसको पहले नहीं बोला जा सकता।
9: Now Rahul Gandhi has called it a fixed match between the Election Commission and the BJP.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: A healthier India doesn't happen in a day.
2: It starts with the health choices that we make every day.
3: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
1: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
4: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
3: One informed choice और एक healthier action.
1: Giving better health in more hands every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा, रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट रंग बना रहे।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
3: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
4: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
5: Gold rush on the field.
3: Go for glory, only on NDTV.

करना है आफ्टर आई फिनिश द ब्रीफिंग. एंड आई मस्ट क्लैरिफाई फॉर द व्यूअर्स दैट आर्मी चीफ वॉज देयर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर वॉज देयर, बट दिस इज द वे वी डू इट इन द आर्मी.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
2: स्मॉल
0: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
0: यार लोन भूल गया
8: मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
9: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
9: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
10: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट इट।
8: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझ पेंट रंग बना रहे।

0: clarification saying that documents survey will be done door to door. This is a step that the Election Commission of India has taken, and it remains to be seen on how many concerns of the voters will be solved after this step. Well, the face-off over the special intensive revision of electoral rules has escalated further at a key Congress party meeting. Party chief Mallikarjun Kharge listed five demands, including timely access for political parties to electoral rolls and relevant data in a simple format. Meanwhile, Congress has stepped up its attack over the SIR and alleged deletion of voters. The party has demanded the CEC's resignation, immediate suspension of the SIR and even restoration of the 13 crore voters, alleging that the issue goes beyond the Election Commission. Meanwhile, the Supreme Court has agreed to early hearing on petition raising questions over decision making with the Election Commission of India.
1: Rahul ji, entire working committee congratulated Rahul Gandhi ji for taking up the biggest issue of Indian democracy through vote chori campaign. Last 18-19 months, he is continuously presenting to the nation with evidence that the Chief Election Commissioner is completely compromised. Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list, both of them are compromised, both of them are making as a design for winning election to BJP.
2: Congress party ka netritva Bharat ki samvidhanik vyavasthaon ko tar tar karne mein koi bhi kasar nahi chhod raha. Aaj Congress party ke netritva ne ye kaha कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ.
3: चुनाव दोबारा कराने चाहिए, क्योंकि ये अब साबित हो गया है कि हरियाणा का चुनाव पूरी तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलीभगत करके जनभावना को हराने का काम किया. हरियाणा में वोट चोरी नहीं, सरकार चोरी की है इन्होंने. और आज वो साबित हो गया है जब ये 14 चिट्ठियां लिखी गई 10 महीने में, और पहली चिट्ठी उस दिन लिखी गई जिस दिन राहुल जी ने हरियाणा की प्रेस वार्ता करी. इसीलिए हमारी मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तुरंत हो, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी कार्रवाई हो, और ये जिम्मेदारी सरकार की है.
4: আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, এই জোটে যোগ দিতে
5: দিল্লি জোটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন,
6: ভালো করে নজর রাখবেন এর সঙ্গে কোন দেশ বিরোধী শক্তির আবার মিটিং না হয়। দিমাগি নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছে, একহাতে জামাত একহাতে দিমাগি নকশাল.
0: In fact, it was just yesterday when Rahul Gandhi visited the Bella estate in the national capital, where he alleged that of the 729 voters there, only one remains on the rolls after the SIR. Listen in.
7: 729 vote hain. Yahan pe ek vyakti ko aapne SIR mein dala hai. वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम.
8: मकान से कुछ लेना देना नहीं होता है वोट का. इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है. इनका नाम आपने आपने किस बेसिस, आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा.
0: Now, as per sources, the Maharashtra Chief Electoral Officer has sought four changes to the ECI Net software for SIR notice process. One of the key demands is to give electoral resignation, registration, I beg your pardon.